अभी आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का आराधना चैनल। आइए अब सुनते हैं श्री राम जन्मभूमि अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपार। सियावर रामचंद्र की जय। श्री अयोध्या राम जी लला की जय। श्री भवन सुत।

0: भर्जनम् भवबीजानाम् अर्जनम् सुरदम्पतां तर्जनम् यमदूतानाम् राम रामेति गर्जनम् श्रीसीतारामनाम् महाराज की। संतपड़े परमार्थे भेषधरे अवधूत राम नाम के गर्जना भाग जाए अवधूत श्री सीताराम नाम महाराज की। श्री राम लला भगवान की, श्री हनुमान जी महाराज की जय। जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम,
1: जय जय श्री राम।
0: नमः पार्वती पतये।

प्रस्तुत है श्री गोविंद गीता अध्याय 5 कर्म संन्यास योग। श्री कृष्ण स्पष्ट करते हैं कि संन्यास तथा कर्म हालांकि दोनों ही मुक्ति पथ को जाते हैं, फिर भी संन्यास अपेक्षा कर्म अधिक विशिष्ट कहलाता है। श्री गोविंद कहते हैं कि सांख्य दर्शन एवं कर्म अथवा भक्ति को एक समान समझने वाले ही वास्तव में ज्ञानी हैं।

मधुसूदन कहते हैं कि समस्त कर्मों के फल को ब्रह्म समर्पित करने से मानव फल बंधन से मुक्त हो जाता है। श्री भगवान कहते हैं कि काम एवं क्रोध से उत्पन्न वेग को सह पाने वाले ही जीवन में सुखी रहते हैं। श्री कृष्ण योग विधि पर भी प्रकाश डालते हैं।

एक बार कन्हैया अपने घर में माखन चोरी कर रहे थे और माँ ने देख लिया। बाद में माँ अचानक पूछ बैठी, कन्हैया अपने घर में मिठाई मिश्री दूध दही सब तो है, फिर तू हमेशा माखन चोरी क्यों करता है और कुछ क्यों नहीं चुराता? तो कन्हैया कहने लगे,

सभ्यता के खड़ाव की मौन साक्षी है, जिसके तट पर शताब्दियों पहले सभ्यता का सूर्य उगा, धरती में जीवन के अंकुर फूटे, फसलें लहलहाई, मानव का चल सोने के दाने से भर गया। उसका मन नाच उठा, उसके कदम थिरक उठे और उसका उल्लास संगीत बन

0: ताप्ती और संवरण के विवाह की एक सुंदर कथा आती है। कहते हैं संवरण वरुण के अवतार थे। उन्हें ऋषि अगस्त के शाप से मानव जन्म ग्रहण करना पड़ा था। स्थानीय महाविद्यालय के संस्कृत विभाग अध्यक्ष प्रोफेसर श्यामकांत कुलकर्णी ने बताया,
1: पुराणों में एक ऐसा प्रसंग आता है कि अमृत मंथन के बाद वरुण देवता सुरा का कलश लेकर अगस्त ऋषि के आश्रम में ठहरे। ऋषि आश्रम में नहीं थे। वरुण ने मदिरा का जी भर कर पान किया और आश्रम की स्त्रियों के साथ रंग रेलिया मनाने लगे। ऋषि लौटकर आए तो इस उद्धत व्यवहार को देखकर क्रोध से आग बबूला गए। उन्होंने वरुण को शाप दे दिया, देवाधन

0: आश्रम की पवित्रता को खंडित किया है। जा, मृत्यु लोग जन्म लेकर शापित जीवन बिता। वरुण को जब अपनी गलती का एहसास हुआ तो वे मुनि से क्षमा याचना करने लगे। उन्हीं का क्रोध शांत हुआ। उन्होंने कहा, मेरा शाप मिथ्या तो नहीं जी सकता, परंतु यथा समय ताप्ती से तुम्हारा होगा और पुत्र जन्म के साथ तुम शाप मुक्त हो जाओगे।
1: इस तरह वरुण को धरती पर आना पड़ा।
2: एक दिन बड़ी श्रृंग मेखल ने उन्हें सूर्य की तपस्या करने का उपदेश दिया।
0: वत, मैं तुम्हारी उग्र तपस्या से प्रसन्न हुआ।
3: प्रभो, मैं कुरुवंशी राजकुमार ऋतुपुत्र संवरण आपको प्रणाम करता हूँ।
0: सफल मनोरथ हो, वरदान मांगो।
3: आपके दर्शन ही मेरे लिए सबसे बड़ा वरदान है। मुझे कुछ नहीं चाहिए।
0: हम और भी प्रसन्न हैं। मैं तुम्हें अपनी तेजस्वी कन्या ताप्ती का हाथ देता हूँ। उसे सहधर्मिणी के रूप में स्वीकार करो।
3: मैं अनुग्रहित हुआ।

0: तूने यहां पर एक ताल बना दिया है। ये एक पवित्र तीर्थ है।
1: इस सड़क का महत्व बताते हुए बैतूल महाविद्यालय के इतिहास के प्रोफेसर डॉक्टर रामेश्वर पांडे कहते हैं,
2: बैतूल जिला मुख्यालय से 48 किलोमीटर दूर मुल्ताई नामक शहर के मध्य के पवित्र जलकुंड से ताप्ती का उद्गम माना जाता है, किंतु वास्तव में मुल्ताई से 3 किलोमीटर उत्तर और 790 मीटर ऊंची सतपुड़ा की एक पर्वत श्रृंखला से यह नदी निकलती है।
1: मुल्ताई महाविद्यालय के हिंदी के प्राध्यापक डॉक्टर आलोक शुक्ल बताते हैं,
3: मुल्ताई से ताप्ती नदी का उद्गम स्थल है। यह 21 कल्प ताप्ती नदी के नाम से जाना जाता है। इस नदी की विशेषता यह है कि इसके किनारे बहुत सारे धार्मिक तीर्थ स्थल हैं। यहाँ सात कुंड हैं।
1: मुल्ताई के वयोवृद्ध नागरिक रामजीराव बाबूराव पाटिल इस सरोवर के ऐतिहासिक संदर्भों की जानकारी देते हुए कहते हैं,
4: सन 1763 के लगभग जाने जी भोसले ने उस तालाब के निर्माण का कार्य हाथ में लिया। आज जो ताप्ती तालाब की पाषाण की सीढ़ियों से बना हुआ जो नैनाधिराम तालाब आपको दिखाई पड़ रहा है, वह वास्तव में जानू जी भोसले ने बनवाया था इस उपलक्ष्य में कि इस नदी के जल से मेरा रोग दूर हुआ है, इसलिए इस उपलक्ष्य में इन्होंने इसको बनाया था। यहाँ तात्या टोपे भी 1858 में आए थे। यहाँ के ब्राह्मणों को उन्होंने एक एक कसर फीस सोने की दक्षिणा में भी दी थी। अंग्रेजों को जब मालूम हुआ तो उन्होंने यहाँ आकर जिन जिन लोगों को उन्होंने असरफिया प्रदान की थी उन सब से वो असरफिया लेकर और उनको सजा भी दी थी।
0: कई लोग यहाँ पिंडदान कर भी आते हैं और यहाँ अस्थि विसर्जन कर अपने पितरों की आत्मा के लिए मोक्ष का मार्ग प्रशस्त

सदियों पहले आभीरों ने ताप्ति के तट पर बस्तियां बसाई। आभीर एक वीर आर्य जाति, गौरा रंग, ऊंचा कद, लंबी भुजाएं और चौड़ा वस्त्र। देखते ही देखते सारी उर्वर घाटी में उनकी बस्तियां फैल गई।

0: टूटी और बिगड़ते रहे, राज्य फैलते और सिकुड़ते रहे। सातवाहन और शकों में युद्ध हुए, शकों और अंगों की तलवारें टकराई। चालुक्य और राष्ट्रकूट, यादव और यवन अपनी अपनी सत्ता के संघर्ष करते रहे।
1: संघर्ष की इस यात्रा में एक दिन पापी के आंचल में उभरा एक सुंदरगढ़, असीरगढ़, युद्ध कला और स्थापत्य कला का बेजोड़ समन्वय, जो थके हुए एक घायल प्रहरी सा आगे खड़ा है, निश्चल और अधिक,
0: जिसकी एक एक दीवार खानदेश के गौरव में अतीत की कहानी कह रही है, जिसका एक एक पत्थर पंडाल चौहान और इष्टपाल हांडा के शौर्य की गाथा गा रहा है।
2: ये मिट्टी हमारी माँ है, हमारा गौरव है, हमारा सर्वस्व है। आज इसकी रक्षा में प्राण देने की घड़ी आ गई है। बोलो, तैयार हो?
3: हम तैयार है।
2: हम खून की आखिरी बूंद तक लड़ेंगे,
3: जरूर लड़ेंगे।
2: सिल सिल कट जाएंगे पर घुटना नहीं टेकेंगे,
3: घुटना नहीं टेकेंगे।
1: खानदेश की धरती पर ताप्ती की लहरों को छूटा हुआ एक और किला है थालनेर। इतिहास

0: अनेक तीर्थ इसे करुणा प्रदान करते हैं।
1: उर्जावाद के पास जहाँ पूर्णा नदी ताप्ती के प्रवाह में आकर मिलती है, वहाँ विद्यमान है चांगदेव महाराज की समाधि। कहते हैं चांगदेव एक शापित मरुदगण थे, जिन्हें संत ज्ञानेश्वर की कृपा से पुनः परम पद प्राप्त हुआ था। हर वर्ष यह हमला लगता है सारा।

0: उस महात्म्य का वर्णन करते हुए राजीव भट्ट कहते हैं,
1: प्रकाश ठाकुर उसको प्रतिकाशी कहा है। प्रतिकाशी इसलिए कि बनारस वगैरह या तो फिर अपने पूरे भारत वर्ष के अंदर पूरा नामक महादेव का दर्शन भक्तजनों को कहीं भी मिलता नहीं है। कोई भक्तजन यहाँ आकर के लेते हैं और कृतार्थ होते हैं। और कहा जाता है इधर या तो अपने पूरे भारत वर्ष में कि भाई तीर्थ यात्रा तो अपन ने की, लेकिन यहाँ प्रकाशिया चलो तो फिर जो कुछ भी थोड़ा बाकी है वो तो मिल जाएगा। इसलिए यहाँ पर लोग आते हैं और नानाधिक कर्म करके पहले पुष्प दंतेश्वर भगवान का महादेव का दर्शन लेते हैं। संस्कृत में तापी के बारे में जो कुछ भी बताया है तापी महात्म्य के अंदर, तो गुप्तेश्वर प्रकाशाया राम क्षेत्र के सुंदरी, गुप्तेश्वर प्रकाशाया राम क्षेत्र के सुंदरी सर्वत्र दुर्लभा तापी त्रिशु स्थाने विशेषतः।
2: यह ताप्ती की धारा भगवान पुष्प दंतेश्वर, केदारेश्वर और सिद्धेश्वर

0: वह ताप्ती का मंदिर है। यहाँ 12वें वर्ष सूर्य पर्व पर मेला लगता है। ताप्ती महात्म्य का पारायण किया जाता है।
1: तो सज्जनों, गंगा ने धरती पर आना तो स्वीकार कर लिया, पर इसमें शंका प्रकट की कि धरती पर ताप्ती

0: अमित संपत्ति ने देश के लिए समृद्धि के द्वार खोल दिए हैं। उदित शेषराव गावंडे इसका विवरण देते हुए कहते हैं,
1: नेपाल के पूर्वी भाग में करीबन 6-7 मील दूरी पर डोरगांव के समीप अर्थात किचनडा के पास के करीबन 30 मील के क्षेत्र में कोयला बहुत तरह से रूप में पत्थरों में चमकीले शंख पाए जाते हैं तथा रवेदार चमकदार पत्थर पाए जाते हैं। यहाँ पर कुआ आदि खोदने से कोयले की मात्रा अभ्रक निकलता रहता है और तापी के जल में विस्तारित रूप से कैल्शियम और आयरन की मात्रा अधिक है।
0: तापी के प्रवाह पर कई छोटे बड़े बांध बांधे गए हैं जिनमें सबसे पहले आए खरिया घुटू और नवासा। इन बांधों से निकली नहरों ने किसानों के जीवन में नई क्रांति ला दी है। मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र राज्यों का 1.25 लाख हेक्टेयर से भी ज्यादा क्षेत्र इन सिंचाई परियोजनाओं से लाभान्वित हुआ है। बैतूल के मध्य प्रदेश जल संसाधन विभाग के तंत्री इंद्र सिंह गौर ताप्ती के जलग्रहण क्षेत्र की जानकारी देते हुए बताते हैं,
2: ताप्ती नदी की लंबाई उद्गम स्थान से संगम तक 723 किलोमीटर है। उससे से मध्य प्रदेश में इसकी लंबाई 132 किलोमीटर, महाराष्ट्र में 217 किलोमीटर और गुजरात में 175 किलोमीटर है। निर्मित 20 लघु योजनाओं से 905 हेक्टेयर इरिगेशन होता है। इस निर्माणाधीन 18 लघु सिंचाई योजनाओं से 5400 हेक्टेयर इरिगेशन होगा। 27 एक वर्ग सिंचाई योजना और 45 लघु सिंचाई योजनाओं से 2700 हेक्टेयर में इरिगेशन होगा।

0: सिलसिला बना दिया है।
1: धुलिया जिले का लोअर ताप्ती प्रकल्प लगभग 40,000 हेक्टेयर जमीन को सुजलाम सुफलाम होने का वरदान देता है। ताप्ती जल विकास परिषद के अध्यक्ष पीके अन्ना पाटिल कहते हैं,
2: कई साल से ताप्ती का पानी लीक हो रहा नहीं था। अब इसके सिवा दूसरा कोई चारा नहीं था कि जिसको ताप्ती बसिन बोलते हैं। उस ताप्ती जन का अगर विकास करना है तो ताप्ती और उसके प्रभुदेवी का पानी इस्तेमाल करने के सिवा इसका विकास हो नहीं सकता है। अब हम पानी के इस्तेमाल के लिए तो डैम्स बनाए खुड़िया घाटी में, मावथल में उसका डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, फिर उसमें अपर ताप्ती लोअर ताप्ती इसमें डैम बना के उनका वितरण करेंगे, जो हम उनको हम एक पढ़ा देंगे। तो इस विकास के लिए ताप्ती अथॉरिटी क्रिएट की जाए। उस अथॉरिटी के हिसाब से 10 साल के अंदर इसका पूरा विकास हो सके, पानी इस्तेमाल हो सके।
0: गुजरात में प्रवेश करते न करते ताप्ती का प्रभाव एक विशाल महानद बन जाता है। भूकर, भोर, गुली, नावली, मनेर, पूर्णा, वाघूर, गिरणा, बोरी और पांझना जैसी छोटी बड़ी नदियां इसे विस्तार देती हैं।
1: उकाई, काकरा पारा जैसे बड़े बांध सिंचाई की सुविधाओं से ग्रामीण जीवन को संपन्न बनाते हैं और जल विद्युत परियोजनाएं, छोटे खलियानों और

0: बांध के कई देश हैं, जैसे कि सिंचाई, बिजली उत्पादन, मछली पालन और सबसे महत्वपूर्ण बाढ़ नियंत्रण। उकाई बांध से सीधा 152,000 हेक्टेयर की सिंचाई होती है। इसके अलावा उकाई बांध से सातरा पर्वत को भी पानी दिया जाता है, जो 227,500 रुपये की सिंचाई होती है। इस योजना से सूरत, बलसाड़ और भरूच जिला के अधिकांश भाग लाभान्वित होते हैं। इसके अलावा 300 मेगावाट पनबिजली भी तैयार की जाती है। प्रति वर्ष 5,000 टन मछली का उत्पादन किया जाता है।
1: उकाई बांध मशीनरी विभाग के उप कार्यकारी अभियंता आर जे मंडालिया बांध के विषय में और जानकारी देते हुए कहते हैं,
2: कई जलाशय में गुरुत्म पानी की संग्रह शक्ति 6.9 मिलियन एकर फीट की है और जिसमें से 5.75 मिलियन एकर फीट पानी का उपयोग

0: सिंचाई और बिजली के लिए किया जाता है। उकाई बांध की लंबाई 5 किलोमीटर है। उकाई माटी बांध की महत्तम ऊंचाई 68 मीटर है और पक्का बांध की महत्तम ऊंचाई 80 मीटर है। छलती बांध में 22 दरवाजे लगे हैं जिनके द्वारा 18 लाख घन फुट प्रति सेकंड पानी छोड़ा जा सकता है।
1: ताप्ती के अंतिम पड़ाव पर स्थित है सूरत, गुजरात का स्वर्ण नगर सूरत, जिसने इतिहास देखा ही नहीं बल्कि इतिहास का स्वयं निर्माण किया है। मुगलों के आक्रमण से लेकर स्वतंत्रता संघर्ष तक की असंख्य गौरव गाथाएं जिसकी गलियों में गूंजती रही हैं, सोनगढ़ और सूरत के गढ़ जिसके पहरेदार रहे हैं। सूरत के एनटीडी आर्ट्स कॉलेज के इतिहास विभाग के अध्यक्ष प्रोफेसर मोहन मेघानी बताते हैं,
2: प्राचीन काल में या मध्यकालीन समय में सोलंकियों की तो सत्ता इधर थी ही, उसके बाद में जो स्वतंत्र मुस्लिम सत्ता की स्थापना हुई यानी सन 1411 के बाद, तब पहले हमें इतिहास में ऐसी जानकारी मिलती है कि जो यहाँ का सुल्तान मुजफ्फर शाह सतम था उसका पुत्र मस्ती खान यानी सूरत और रामदेव का गवर्नर था, ऐसा उल्लेख मिराते सिकंदर में सर्वप्रथम हमें मिलता है।
1: प्रोफेसर मेघानी सूरत के किले की सुदृढ़ता का वर्णन करते हुए कहते हैं,
2: आफ्टर 1573 यानी 1573 के बाद मुगलों की सत्ता हुई, अकबर ने गुजरात पर आक्रमण किया और गुजरात पर अपनी सत्ता स्थापित की, उसके बाद उस सूरत का पूरा को पूरा व्यापारी कारोबार या एडमिनिस्ट्रेशन सब मुगलों के द्वारा चला। यह सिलसिला इसी सन 1759 तक चला, उसके बाद में किले पर अंग्रेजों ने कब्जा किया और तब तक मुगलाई चली। तो अकबर ने पूरा का पूरा जो एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट सूरत को बनाया था 1573 के बाद, तो उसमें क्या था कि सिटी में दो गवर्नर थे और दोनों की सत्ता समान थी, दोनों एक दूसरे पर निगाह रखता था। किले का अलग गवर्नर था, उसका काम किले का रक्षण और तापी का रक्षण और लेवल बेस को संभालना था, और दूसरा शहर का गवर्नर था।
1: किले के निर्माण के संबंध में वे बताते हैं,
2: सल्तनत काल में महमूद तृतीय करके जो सुल्तान था उसके टाइम में सूरत का गवर्नर था खुदावन खान उर्फ ख्वाजा सफर सलमानी। तो उसमें पोर्चुगीजों की रेड के सामने यानी पोर्चुगीजों के हमले के सामने सूरत सिटी का रक्षण करने के लिए इस किले का निर्माण कराया था 1540-41 में। कहते हैं कि वो किला इतना मजबूत था कि अकबर को भी इस किले को लेने के लिए 1 महीना और 17 दिन लगे थे।
1: सूरत जो अपनी संपत्ति और समृद्धि से सदा संसार को ललचाता रहा है, उसका सांस्कृतिक महत्व बताते हुए दास बहादुर वाई वाला,
3: सूरत उसका पुराना नाम सूर्यपुर, इसके आगे रांदेर था, सूर्य पत्नी का नाम रांदल और रांदल का जो स्थान है वो रांदेर में, और सूर्य की तपोभूमि सूर्य के पास कतार गांव बोला जाता है, वहां पर सूर्य ने तप किया ऐसी बात है, और सूर्यपुर का अश्विनी कुमार यहां पर पढ़े वो अश्विनी कुमार अभी भी है।
1: इस आकर्षण में ही उसे दिए हैं असंख्य घाव, यही से शिवाजी को मिला था अपार खजाना, यही से फिरंगी अपना विश्वव्यापी व्याप संचालित करते थे। दक्षिण गुजरात चैम्बर ऑफ कॉमर्स के उपाध्यक्ष हीरालाल गांधी कहते हैं,
4: सूरत को कहा गया है सोने की मूरत। सूरत मुगल शाही जमाने में एक अच्छा सा बंदर था, वही आकर्षण की वजह से पहला ब्रिटिश जहाज सूरत में आया और सूरत से आयात निर्यात का व्यापार कई सदियों पहले हो रहा था। सूरत में है मक्काई पुल, सूरत में है मुगल सराय जहाँ से हज के लिए मक्का जाने के लिए ये बंदर था।
1: आधुनिक भारत के औद्योगिक विकास में भी सूरत का योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण रहा है। दक्षिण गुजरात चैम्बर ऑफ कॉमर्स

0: एंड इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष रमेश गजीवाला बताते हैं,
1: सूरत में जो विकास हुआ उसमें कृषि आधारित उद्योगों का हुआ। वो कृषि आधारित उद्योगों में पेपर मिल, कैटल फीड, डैम, फिशिंग एंड मरीन इंडस्ट्री का विकास उसमें हुआ। वो खास करके सूरत के आजूबाजू के विस्तार में हुआ। दूसरा जो छोटा इंडस्ट्री है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री जिसको बोला जाता है और विकेंद्रित क्षेत्र में है, वो टेक्सटाइल, आज कम से कम सूरत में 3 लाख टावलियन काम कर रही है। रासायनिक उद्योग में कम से कम सूरत में 400 बिजनेस यहाँ है। ये डायमंड पॉलिशिंग इंडस्ट्री सूरत में बड़ी जोरों से चल रही है। 3 लाख आदमी उसमें रोजी पा रहे हैं और ज्यादा से ज्यादा जो डायमंड है वो अमेरिका, बेल्जियम, इंग्लैंड, जापान और हांगकांग में भारत से जा रहे हैं।
0: अभी तक के मेलों और उत्सवों में पारंपरिक रचनाएं

0: बैठकर साहित्य की ऊंचाइयों को गा है। गुजरात के साहित्यकार भगवती कुमार शर्मा बताते हैं,
1: गुजराती साहित्य के जो पहले अर्वाचीन कवि हुए, कवि नर्मद, वे सूरत के थे। गुजराती भाषा का जो पहला उपन्यास नॉवल लिखा गया, करण घेलो, वो भी सूरत में लिखा गया, और उसके खत नंदशंकर तुलजाराम मेहता भी सूरत के थे। गुजरात के ख्याति प्राप्त, मैं कहूँगा कि अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त नाट्यकार जो हुए, चंद्ररदन मेहता, वो भी सूरत के थे और सूरत में पैदा हुए, उनकी परवरिश भी हुई।
2: ताप्ति के तट पर स्वतंत्रता भी उद्घोष हुआ। सूरत जिला तो इस क्षेत्र में सबसे आगे रहा है। दास बहादुर सवाई वाला कहते हैं,
3: महात्मा गांधी जी ने सूरत के पागिया में कहा था कि मैं ये ब्रिटिश की जड़ उखड़ने वाला हूँ। गांधी को भी सूरत जिले में हुई और बारगोली का सत्याग्रह पहला हुआ और उसमें विजय पाई तो जो पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार सत्य वहां से मिला।
0: यह है ताप्ती की लंबी यात्रा का आखिरी पड़ाव। बस एक कदम और आगे उसकी यात्रा समाप्त हो जाती है। खंबात की खाड़ी में वो अनंत सागर में विलीन हो जाती है।
2: परंतु क्या ये विलय इस यात्रा का अंत है? शायद नहीं, क्योंकि इसकी यात्रा कभी समाप्त नहीं होती। वो तो युगों युगों से बह रही है, अथवा अविराम अश्राम

मन की शांति और शक्ति के लिए जुड़िए भक्ति से। आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मनपसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, महाकुंभ मेला हो या जगन्नाथ रथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए सूफी संगीत।

0: गीत और शब्द कीर्तन,
1: कोई बोले राम राम,
0: आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल, न्यूज़ ऑन AIR ऐप, DTH और YouTube पर भी उपलब्ध आराधना।

क्या दृश्य है, कन्हैया और मैया दोनों एक दूसरे के गले से लगे आंसू बहा रहे हैं। दोनों जानते हैं माखन खाया है और दोनों कह रहे हैं माखन नहीं खाया। कन्हैया ने देखा अब तो माँ मान गई है, अब झूठ बोलने से क्या फायदा। शब्दों का चमत्कार देखिए, कन्हैया ने अपने इन्हीं शब्दों में स्वीकार भी किया। अचानक कन्हैया ने माँ के आंसू पोंछे और देखिए मुस्कुराते हुए क्या कहने लगे,

आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।

0: मन की शांति और शक्ति के लिए जुड़िए भक्ति से। आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मनपसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, महाकुंभ मेला हो या जगन्नाथ रथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए सूफी संगीत और शबद कीर्तन,
1: कोई बोले राम राम।
0: आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल, न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और YouTube पर भी उपलब्ध। आराधना

0: सर्वेश्वर शिव की महिमा के पिछले प्रकरण में आपने सुना कि महादेव शंकर की इच्छा से परमपिता ब्रह्मा, भगवान विष्णु और रुद्रदेव को सृष्टि की उत्पत्ति, जीवों का पालन और प्राणियों की मुक्ति के तीनों काम देकर भगवान अंतर्धान हो गए। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको सृष्टि की उत्पत्ति की कथा सुनाएंगे। ये प्रकरण शिव पुराण के रुद्र संहिता के 15वें अध्याय से आरंभ होता है। नाट्य रूपांतरकार और निर्देशक हैं अनिल सूद।
1: हे शौनक, परमपिता ब्रह्मा की संपूर्ण सृष्टि को पैदा करने में उन्हीं की इच्छा और संकल्प से तीनों लोकों में चर और अचर तत्वों की रचना हुई।
2: हे महामुनि सूत जी, आप कृपा कर मुझे बताएं कि परमपिता ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना कैसे की।
1: शौनक जी, यही प्रश्न परमपिता ब्रह्मा के मानस पुत्र देवर्षि नारद ने ब्रह्मा से किया था। मैं तुम्हें वही प्रसंग संक्षिप्त में सुनाता हूं। एक दिन ब्रह्मलोक में महर्षि नारद तीनों लोकों का भ्रमण करते हुए पहुंचे और अपने पिता ब्रह्मा के सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए।
3: नारायण नारायण नारायण। हे परम पिता ब्रह्मा, मैं आपका पुत्र नारद आपको प्रणाम करता हूँ।
4: देवर्षि नारद, कहाँ कहाँ विचरण करके आ रहे हैं? लगता है आपके मन में कोई बड़ी जिज्ञासा है जिसके कारण आपका चित्त प्रश्नों से भरा हुआ है।
3: हे परम पिता, आप तो अंतर्यामी हैं। मेरे मन में ये जानने की उत्सुकता है कि आपने सृष्टि का आरंभ कैसे किया। ये कथा संसार के अनेक प्राणियों को ज्ञात नहीं है।
4: आपकी जिज्ञासा संसार के प्राणियों का कल्याण करने वाली है, अतः मैं आपको उसके संबंध में संक्षिप्त में बताता हूं। भगवान महादेव ने जब मुझे और भगवान विष्णु तथा रुद्र को सृष्टि के तीनों कामों अर्थात उत्पत्ति, संचालन और विनाश का दायित्व सौंपा तो वे मुझे आदेश देकर अंतर्धान हो गए। भगवान विष्णु भी अपने वैकुंठ लोक जाने लगे तो मैंने उनसे कहा, हे विष्णु भगवान, महादेव ने मुझे एक कठिन काम सौंपा है, ये आपके सहयोग के बिना पूरा नहीं हो सकता। देव, मैं नहीं जानता कि सृष्टि के आरंभ के लिए मैं कौन सा यत्न करूं।
5: हे ब्रह्मा, आप ब्रह्मांड के सभी 24 तत्वों का साथ ग्रहण कीजिए जिससे सृष्टि के संचालन में विविधता और तरह तरह की क्रियाओं का समावेश हो सके। इसमें केवल सतोगुण ही नहीं बल्कि तमोगुण और रजोगुण भी होने चाहिए, तभी सृष्टि के सभी जीवों के कामकाज पर भांति भांति की भावनाओं का संचार हो सकेगा।
4: हे विष्णु, ये आपने बहुत सुंदर बात कही है, मैं ऐसा ही करता हूं।
5: हे ब्रह्मा, अब मैं वैकुंठ जाता हूं, आवश्यकता होने पर मैं फिर उपस्थित हो जाऊंगा।

अपने आप से पूरे ब्रह्मांड में केवल जल ही जल है। इसी जल से मुझे सृष्टि की रचना करनी है। हे शिव, इस जल के द्वारा मैं आपका स्मरण करता हूं, सृष्टि रचने का संकल्प लेता हूं। यह विशाल जल से भरी अंजलि मैं आपको समर्पित करता हूं।

मैं अभी अभी जन्मे भगवान शिव की शरण लेता हूं, सत्य जाग को मेरा प्रणाम है। इसी जगत में आप मेरा पराभव न करें, आप सृष्टि के उद्भव कर्ता को मेरा प्रणाम। भगवान शंकर की कृपा से मेरी अंजुरी के जल से यह विशाल अंडा पैदा हुआ है, यही इस सृष्टि का मूल कारक होगा। परंतु ये क्या, ये तो केवल जड़ है, चेतना के अभाव में सृष्टि कैसे होगी? इस अंड में चेतना लाने के लिए मैं क्या करूं? हे भगवान विष्णु, कृपया आप मेरी सहायता कीजिए, मैं आपकी शरण में हूं। मुझे रास्ता दिखाइए प्रभु, मुझे रास्ता दिखाइए। हे ब्रह्मा, मुझे आदेश दें, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं? हे महाभाग, आपकी सम्मति के अनुसार मैंने 24 तत्वों से बना ये अंड पैदा किया है, परंतु इसमें किसी प्रकार की चेतना के चिन्ह दिखाई नहीं देते। आपको भगवान शिव ने सृष्टि के संचालन और पालन का दायित्व सौंपा है, इसलिए प्रभो आप स्वयं इस अंड में प्रवेश कीजिए। जैसी आपकी इच्छा देव, मैं भूमि को सब ओर से घेर कर इस विशाल अंड में स्वयं प्रवेश करता हूं। हाँ, इस अंड में चेतना के लक्षण दिखाई देने लगे हैं। अब सृष्टि के अलग अलग तरह के कार्यों के लिए तमो गुण आवश्यक है। हे शिव, पाप पूर्ण तमो गुण, सृष्टि के प्रादुर्भाव के लिए अविद्या पंचम जागृति। सृष्टि की रचना का पहला चरण पूर्ण हुआ, परंतु ये तो केवल तमोगुण ही है, पापमय, इनसे सृष्टि का संचालन कैसे होगा? ये रहा तो तिर्या रहा है, यानी पशु पक्षी जो तिरछे चलते हैं, इससे प्राणियों का उद्धार कैसे होगा? हे शिव, तमोगुण के अतिरिक्त और भी कुछ चाहिए जिससे सृष्टि के प्राणियों का उद्धार हो। हां, सतोगुण, सतोगुण।

砂糖コーラ。はあ、いやひはえさつべくさるがかおだい。けてうさるがい。परंतु पुरुषार्थ साधन के लिए तो ये भी पर्याप्त नहीं है। तमो गुण और सतो गुण के अतिरिक्त कुछ और होना चाहिए। हे शिव शंभो, रजोगुण रजोगुण रजोगुण। यही रजोगुण संसार के प्राणियों के लिए पुरुषार्थ का साधन बनेंगे। एक ओर तमोगुण, दूसरी ओर सतोगुण और मध्य में रजोगुण। इस सर्ग के प्राणी मनुष्य होंगे जो पुरुषार्थ साधन के सबसे बड़े अधिकारी होंगे। हे शिव, आपकी आज्ञा से मैंने चर अचर, स्थावर जंगम और कर्म के अधिकारी मनुष्यों की रचना का संकल्प पूर्ण किया। किंतु अभी तो मेरा काम पूरा नहीं हुआ। संसार के प्राणी का जन्म और मृत्यु कैसे होगी?

0: पिता, हम तो वैरागी हैं, हम संतान उत्पन्न करने का कार्य कैसे कर सकते हैं?
1: परंतु पुत्र, सृष्टि की पूर्णता के लिए ये आवश्यक है।
0: हे पिता, हम अपना उत्तम व्रत नहीं छोड़ सकते।
1: मैं कहता हूँ, ये मेरा आदेश है, तुम चारों मेरी आज्ञा का पालन करो।
0: क्षमा देव, ये असंभव है, असंभव।
1: मेरे ही मानस पुत्र होकर मेरी आज्ञा की अवहेलना कर रहे हो, ये मैं नहीं सह सकता। तुम्हें मेरे क्रोध का ज्ञान नहीं है, मैं तुम्हारा भयंकर अनिष्ट कर सकता हूँ। हे भगवान विष्णु, मेरी सहायता कीजिए, मेरे मानस पुत्र मेरा आदेश पालन करने से मना कर रहे हैं, ये मेरे संकल्प की पूर्ति में बाधक हो रहे हैं।
2: हे ब्रह्मा, क्रोध को छोड़ दीजिए, ये चारों आपके मानस पुत्र हैं, इन्होंने आप ही के आदेश से वैराग्य धारण किया है, मनुष्यों की उत्पत्ति के लिए ये उपयुक्त नहीं है।
1: तो फिर मैं क्या करूं प्रभु, सृष्टि की रचना का मेरा काम अधूरा रह जाएगा।
2: हे ब्रह्मा, आप सर्वेश्वर शिव की शरण में जाएं, वे ही आपको इस कठिन समय में राह सुझाएंगे।

हे शिव शंभू, आप ही रजोगुण का आश्रय लेकर संसार की सृष्टि करते हैं। सतोगुण से संपन्न होकर सातों भवनों का धारण पोषण करते हैं। तमोगुण से युक्त होकर सबका संहार करते हैं और त्रिगुणमयी माया को लांघकर अपने सिद्ध स्वरूप में स्थिर रहते हैं। सत्यचित आनंद स्वरूप पूर्ण आपको हम प्रणाम करते हैं। आप ही सृष्टि के काल में मुझ ब्रह्म, पालन के समय विष्णु और संहार काल में रुद्र का नाम धारण करते हैं। आप सदैव सात्विक भाव को अपनाने से ही प्राप्त होते हैं। आपको प्रणाम।

0: सृष्टि के आदिकर्ता ब्रह्मा, मैं सदाशिव हूँ, आपका कौन सा काम पूरा कर सकता हूँ?
1: हे महादेव, आपका ये रूप मुझे चकित कर रहा है। आपका आधा शरीर पुरुष का और आधा नारी का है, ये क्या रहस्य प्रभु?
0: हे ब्रह्मा, आपके संकल्प को पूरा करने के लिए मैं अर्ध नारीश्वर रूप में प्रकट हुआ हूँ। संसार की उत्पत्ति के लिए

0: और मादा दोनों का होना आवश्यक है। देव, कृपा पूर्वक आप ऐसे जीवों की सृष्टि कीजिए जो जन्म और मृत्यु के भय से युक्त हो।
1: ब्रह्मा, मैं जन्म और मृत्यु के भय से युक्त अशोभन जीवों की सृष्टि नहीं करता, क्योंकि वे अपने पाप और पुण्य कर्मों के अधीन होकर सुख और दुख के समुद्र में डूबे रहेंगे। मैं तो दुख के सागर में डूबे हुए उन जीवों का उद्धार ही करूंगा।
0: हे महेश्वर, तो क्या जीवों की सृष्टि का काम भी मुझे ही करना होगा?
1: प्रजापति, दुख में डूबे हुए सारे जीवों की सृष्टि आप ही करेंगे। मेरी आज्ञा से ये काम करने के कारण माया आपको बांध नहीं सकेगी।
2: नारायण नारायण। हे परम पिता ब्रह्मा, सृष्टि के आरंभ की कथा तो अत्यंत मनोहारी है, इसके बाद आपने क्या किया?
0: हे पुत्र, इसके बाद मैंने सृष्टि के पांच तत्वों को मिलाकर आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी की सृष्टि की। इन्हीं के मेल जोल से पर्वतों, समुद्रों और पेड़ पौधों को उत्पन्न किया। कला से लेकर काल तक के अलग अलग भागों की रचना की।
2: हे परम पिता, इसके बाद आपने संसार में पुरुषों की सृष्टि कैसे की?
0: नारद, सबसे पहले मैंने अपने दोनों नेत्रों से मरीच को, हृदय से भृगु को, सिर से अंगिरा को, वशिष्ठ को अपान से, केतु को कानों से, अत्रि को प्राणों से, तक्ष को गोद से, तुम्ब को छाया से, कर्दम मुनि को संकल्प से तथा धर्म से तुमको उत्पन्न किया।
2: हे परम पिता, क्या इन्हीं से देवताओं और असुरों की सृष्टि हुई?
0: हाँ नारद, भगवान शंकर की प्रेरणा से मैं अपने शरीर को दो भागों में बांट कर आधे शरीर से पुरुष और आधे शरीर से स्त्री हो गया। उस पुरुष का नाम मनु के नाम से प्रसिद्ध हुआ और स्त्री का नाम सतरूपा से। मनु ने सतरूपा के गर्भ से प्रियावर्त और उत्तानपान नामक दो पुत्र पैदा किए और तीन कन्याएं, जिनके नाम आहुति, देव आहुति, प्रसूति थे। आहुति का विवाह प्रजापति रुचि के साथ हुआ, देवाहुति का कर्दम के साथ और प्रसूति का दक्ष के साथ विवाह हुआ। उनकी संतान परंपराएं ही सारे जगत में व्याप्त हैं।
2: भगवान, महादेव शंकर कैलाश पर कब गए?
0: नारद, ये कथा बहुत दिलचस्प है। कामपिल्य नगर में यज्ञदत्त नाम के प्रसिद्ध ब्राह्मण रहते थे। उनके एक पुत्र था गुणनिधि। गुणनिधि बहुत ही दुराचारी तथा भोगी था। पिता के लाख समझाने पर भी उसमें कोई परिवर्तन नहीं आया। पिता यज्ञदत्त ने गुणनिधि को निष्कासित कर दिया। गुणनिधि एक अन्य नगर में चला गया। वहां के शिव मंदिर में बहुत चढ़ावा आता था। गुणनिधि के मन में लालच आ गया और उसने चढ़ावा चुरा लिया। गांव वालों ने उसे पकड़ लिया और इतना मारा कि उसकी मृत्यु हो गई। उसे लेने जब यमदूत आए तो
3: गुणनिधि, तूने जीवन भर दुराचार किया है। यम की आज्ञा से हम तुझे यमलोक ले जाते हैं। तुझे नरक की घोर यात्राएं सहनी पड़ेंगी।
4: हे यमदूत, मुझे क्षमा कर दो। मुझे नरक की यातना से बचा लो। यमदूत
5: ठहरो। महाराज यम के दूतों, तुम इसे यमलोक नहीं ले जा सकते।
3: नहीं ले जा सकते? किंतु क्यों? इसने तो जीवन भर अनेक कुकर्म किए हैं। महाराज यम की आज्ञा है कि
5: किंतु

0: महादेव शिव की आज्ञा है कि गुणनिधि की आत्मा को शिवलोक ले जाया जाए।
1: किंतु इसने तो कोई पुण्य का काम नहीं किया।
0: किया है, इसने अंधकार ग्रस्त शिव मंदिर में दीप जलाया है।
2: दीप? किंतु वो तो मेरा वस्त्र था।
0: हाँ, वही भगवान शिव के लिए वही दीपदान था।
2: हाँ?
0: सर्वेश्वर शिव की कृपा से तुम शिवलोक के अधिकारी हो गए। हाँ? आओ गुणनिधि, शिवलोक चले।
2: हाँ?
0: आओ।
2: जय भोले, जय भोलेनाथ।
0: आओ आओ गुणनिधि, महादेव शंकर विराजमान हैं।
2: हे करुणा निदान, मैं आपको बार बार बारंबार प्रणाम करता हूं। मैंने जीवन भर अनेक पाप किए, मुझे सचमुच पश्चाताप है। मुझे क्षमा करें दे।
3: गुणनिधि,
2: प्रभु
3: तुमने मेरे मंदिर में ज्योति जलाई है, इसलिए तुम अगले जन्म में कलिंग देश के राजा के पुत्र के रूप में जन्म लोगे।
2: प्रभु,
3: तुम्हारा नाम राजा दम होगा और तुम्हें सत्कर्मों के लिए एक और अवसर मिलेगा।
2: हे प्रभु, हे महादेव, आपकी जय हो। आप सचमुच भोले भंडारी हैं। प्रभु, मैं धन्य हुआ प्रभु, मैं धन्य हुआ।
4: ये कैसा तेज है, जैसे सैकड़ों सूर्य एक साथ धरती पर उतर आए हों।
3: हे अलकापति, मैं साक्षात शिव हूं। तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न होकर तुम्हें वर देता हूं। बोलो, तुम्हारा मनोरथ क्या है?
4: हे महादेव, आपकी जय हो। आपके तेज से मेरी आंखें चुधिया गई हैं। मैं कुछ भी देख पाने में असमर्थ हूं प्रभु। कृपया मेरी दृष्टि को ऐसी शक्ति दीजिए कि मैं आपके दर्शन कर सकूं।
3: तथास्तु।
4: सर्वेश्वर शंकर की जय हो। आपका अलौकिक रूप देखकर मैं धन्य हुआ प्रभु। लेकिन महादेव के साथ ये कौन है? अद्भुत सुंदरी, भगवान शिव के इतने निकट, इन्होंने ऐसा कौन सा तप किया है जो मेरी तपस्या से भी बढ़कर है?
5: महादेव, ये तपस्वी लगातार मेरी ओर देखकर क्या बड़बड़ा रहा है? इसकी दृष्टि मुझे असहनीय है। मैं इसके एक नेत्र की ज्योति हर लेती हूँ।
3: उमा, ये क्या किया? ये तुम्हारा पुत्र है, ये तुम्हें पाप दृष्टि से नहीं देख रहा था। बस प्रभु, मैं तुम्हारी तपस्या से संतुष्ट हूं। तुम्हें वर देता हूं कि तुम संसार की सारी संपत्तियों के स्वामी और सबके लिए धन के दाता बनो। आओ पुत्र, अपनी माता के चरणों में प्रणाम करो।
4: महादेवी उमा, मुझ पर कृपा कीजिए।
5: पुत्र, मैं तुम पर प्रसन्न हूं। तुम्हारी बाई आंख तो ज्योतिहीन हो गई है, परंतु मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूं कि तुम कुबेर के नाम से जाने जाओगे। भगवान शिव में तुम्हारी भक्ति बनी रहे।
4: हे उमापति शंकर, मेरी तपस्या

स्वामी, आपकी लीला का रहस्य कोई नहीं जानता। आपने कुबेर को वर देकर उसे संसार की सारी निधियों का स्वामी बनाकर अद्भुत कर्म किया है।

0: देवी, मेरी इच्छा है कि कुबेर के साथ हम कैलाश पर्वत पर ही निवास करें। यह कैलाश पर्वत तीनों लोकों के सुख से भी अधिक सुखदायी और मनोहारी होगा।
1: जैसी आपकी इच्छा प्रभु।
2: सूत जी, महादेव की कैलाश पर जाने की कथा सुनकर मन आनंद से भर गया। अब आप कृपा कर आगे की कथा कहें।
3: हे शौनक, अब कामदेव और रति के विवाह का प्रसंग और दक्ष की तपस्या का वर्णन अगली बार बताएंगे।
4: श्रोताओं, अभी आप रुद्र संहिता के प्रथम अंक की कथा सुन रहे थे। अगले प्रकरण में भगवान शिव की इच्छा से सृष्टि के लिए एक पुरुष और एक नारी के प्रकट होने की कथा का वर्णन करेंगे।

0: शांति और शक्ति के लिए जुड़िए भक्ति से। आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मनपसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, महाकुंभ मेला हो या जगन्नाथ रथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए सूफी संगीत और शबद कीर्तन,
1: कोई बोले राम राम।
0: आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल, न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और YouTube पर भी उपलब्ध आराधना।

चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।

अरे आप गुरु नानक कहायो पूर्ण पुरख ज्योत रूप हर आप गुरु नानक कहायो ताते अंगद भयो तत् स्यो तक मिलायो अंगद कृपा तार अमर सतगुर थिर कियो अमरदास अमृत शत्र गुरु राम दियो गुरु रामदास दर्शन परस कह मत।

पन मथुरा मूर्त सदा थिर लाए चित सनमुख रहो सदा थिर पूर्ण पुरख।

मूर्त पंच प्रमाण पुरख गुर अर्जुन पिखो लैन सत रूप सत नाम सत संतोख धरयो और गुरबाणी भंडार भर गुरबाणी भंडार भर

घरा के तो बेटे मैं तो करता हूँ अरदास, यही दाग लगा के बेटी मन।

0: आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मनपसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, महाकुंभ मेला हो या जगन्नाथ रथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए सूफी संगीत और शबद कीर्तन,
1: कोई बोले राम राम।
0: आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल, न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और YouTube पर भी उपलब्ध आराधना।

लक्ष्मण का समझाए के राम बढ़ौले पाँव, सीता लक्ष्मण रह गए पंचवटी के छाँव। सीता जी की मांग पूरी करने के लिए प्रभु श्री राम स्वर्ण मृग के पीछे चल पड़ते हैं और प्रभु राम का तीर लगने पर मारीच राम जी की आवाज़ में हाय लक्ष्मण पुकार उठते हैं। यह सुन सीता घबरा उठती हैं और गुस्से में जानकी जी लक्ष्मण को कठोर वचन कहते हुए प्रभु राम को खोजने के लिए वन की ओर भेजती हैं। उसके पश्चात साधु के वेश में रावण पंचवटी में सीता से भीख मांगने पहुंचते हैं।

लक्ष्मण रेखा पार करने पर रावण असली रूप धारण करके सीता का हरण करते हैं। अब राम लक्ष्मण पंचवटी पहुंचकर सीता को ना पाकर विलाप करते हुए घायल जटायु से मिलते हैं। गिद्धराज राम लक्ष्मण को सीता हरण की दिशा बताते हैं और सीता की खोज करते हुए दोनों भाई शबरी के आश्रम पहुंचते हैं। यह देख शबरी अत्यधिक भक्ति में लीन हो जाती हैं।

राजभवन और उसके बाहर नगर में भी उत्सव का रंग छाया हुआ है। राग रंग के उत्साह से भरे पुरवासी आते जाते दिखाई देते हैं और स्त्रियां नृत्य करती और गीत गाती दिखाई देती हैं।

राजभवन का आंगन किलकारियों से गूंज उठता है। चारों भाई घुटनों के बल चल रहे हैं, माताएं बलैया ले रही हैं और राजा दशरथ झुनझुना बजा रहे हैं।

हे जगदम्ब, मैं अपनी सेवा करे करी दी। हे देवी, अपने कोई अधिक धन सामग्री के कहीं अर्पियो नहीं, तो पण मुझ ऊपर आप अनुपम स्नेह धरावो छो। एनु कारण ए छे के

अर्थात एक आलरात्रि श्याम कृष्ण वर्णवाळा कृष जेमा रक्तवाहिनी नसो देखाई रही छे एवा वृद्ध देखाता तो फैलायेल एवा वितत आकृति वाला जंगल जेवू जेमनु मस्तक छे के जे

0: मन की शांति और शक्ति के लिए जुड़िए भक्ति से। आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मनपसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, महाकुंभ मेला हो या जगन्नाथ रथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए सूफी संगीत और शबद कीर्तन,
1: कोई बोले राम राम।
0: आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल, न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और YouTube पर भी उपलब्ध आराधना।

आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाश।

आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।

पांच लुटेरे डाल रहे हैं डेरा। ये कौन है लुटेरे जो दिन रात हम सबको लूटा करते हैं और हम इन सबको प्रसन्न रखते हैं, खिलाते पिलाते रहते हैं, ये हमको लूटते रहते हैं। तो इन्हें पहचानिए, इनसे दूर रहिए, नहीं तो सब लूट ले जाएंगे।

पीयूष पवार जी संगत कर रहे हैं। अब इनका विशेष कमाल देखिए, मैं जो सरगम गाऊंगा ये आपको संतूर पे बजा के सुनाएंगे, जरा ध्यान से सुनिएगा ठीक बजाते हैं कि नहीं बजाते। इनको मैं एक ही शर्त पर बंबई से यहां तक लेके आया हूं कि ठीक नहीं बजाएंगे तो यहां छोड़ के चला जाऊंगा, तो जरा ध्यान से सुने फिर।

बंबई वापस ले जा रहा हूं। इनका एक लड़का है 6 साल का, वो भी बहुत अच्छा संतूर बजाता है और अपने स्कूल में, स्कूल के फंक्शंस में संतूर बजा के सुनाता है तो सब उसे बहुत प्यार करते हैं। तो एक बार उसके टीचर ने पूछा, बेटा बहुत अच्छा संतूर।

बजाते हो? तुम्हारे घर में और भी कोई संतूर बजाता है? तो उसने कहा हाँ, और लोग अभी सीख रहे हैं। फिर टीचर ने पूछा, बेटा तुम लोग कितने भाई बहन हो? तो उसने कहा हम लोग 14 भाई बहन, 8 भाई हैं, 6 बहनें। तो टीचर ने कहा सच में? कहता हाँ जी सच में। फिर टीचर ने पूछा, बेटा तुम्हारे पिताजी क्या काम करते हैं? उसने कहा वह यही काम करते हैं। क्योंकि टाइम मिलेगा तो और कुछ करेंगे।

सुनना बड़े पुण्य का काम है आपको कर रहे हैं, और भगवान का भजन गाना उससे ज्यादा पुण्य का काम है। तो कितना अच्छा हो, आप भी गाइए, हम भी गाएं, सब मिलकर ये पुण्य कमाएं। तैयार हो जाइए, पहले मैं गाऊंगा, आप सुनिए, फिर आप गाइए, मैं सुनूंगा।

विधि का विधान कुछ और था। राजा दशरथ ने माता कैकेयी को 3 मांगे पूरी करने का वचन दिया था। विधि की प्रेरणा से माता कैकेयी ने राम के 14 वर्ष वनवास की मांग की। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाहु बरु बचनु न जाई। और पिता के वचन को निभाने के लिए राम जी चले वनवास।